0: For more details, contact us 0345-9232-860, 0300-585-8481.
1: Asmani Herbal Oil, 100% organic, new hair growth, khane ke fawaid, jism ki izafi charbi aur motape ko kam kare, blood pressure aur sugar ko normal rakhe, mardana kamzori ko dur kare, hafza tez kare aur khoon ki kami ko pura kare, maide ki gas, jalan, tezabiyat, badhazmi aur maide ka dard khatam kare, bawasir khooni ubadi, qabz aur matri mein mufeed hai, malish ke fawaid, sar dard, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर कसम के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, ज़हनी सुकून, हर कसम की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिएं। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकलीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860।

सो कुछ टॉपिक है वो ओरिजिनल चा सर वेलोशी दुबई होजरी एंड गारमेंट्स अकाजे शॉपिंग सेंटर बिल मुकाबिल राजा बाजार टोपे ठीक है ना।

यार हुसैन के मिलावेगी। सर वजीर खान सरा गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड बेबी साइकिल चोटा लाहौर शाह यार हुसैन।

मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

बाबाजी सलाम संगीन मामू तदकमा वेलकम वेलकम बाई द बटाग्राम की हा बटाग्राम रानश वाली आई एम जलवा बटाग्राम थराली आई एम जलवा औ बदरंग जमा मेरा अक्सर शाज मखकुला जारा तसलाम आई एम जलवा जोल जलवा बिल्कुल दखेरा सर मुंगरा गलियो प्रोग्राम बता सोज द दोन द्रे बोजु पुरे उरे औ मुंग बरोजान राज डेली बराज उस्ता सु डेर जात मन न गुशाल आबाद जवंद यूसी बिनस कुग हवे जिम अस्सलाम वालेकुम सिंग ए बखैर आले औ ज जर पस ठेर ज्यात खबूमा औ नसीमुल्ला द बर्तोने न औ दा शेर दिता द डालेवी मुझ दा शेर दिता द डालेवी ची मजबूरी में मजबूरी में दश खा वर्ग ज पर शेर मारे जान पुयो म गना नो इंशाल्लाह बे शामिलोम खोजे संदरम बैकग्राउंड के वर को मचदा प्ले शी

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.
2: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया.
3: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का. रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा. आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात. हमारे साथ रहिएगा.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।